धाम राखी धुमधाम राइट सपन नया इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's

0: नाम?
1: सकम्बरी।
0: सकम्बरी?
1: हजुर। तपाईँको नि?
0: सुयोगवीर।
1: सुयोगवीर
0: जोसुपार, बाइ द वे आमदेव
1: डिरेक्टर,
0: म तिमीलाई मेरो म्युजिक भिडियोमा लन्च गर्न चाहन्छु।
1: अनि डिनर चाहिँ गर्नुहुन्न?
2: आर्टिस्ट मोड, लाइट, क्यामेरा।

एल जी ले आयो नया एल जी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एल जी लाइफ गुड।